क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ऐसी गायकी आ, क्या बात है, ये तो 80-90 वाले दिल च वसे हुए गाने।

0: रहा।
1: तो इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेवन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
2: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
2: saveonenergy.ca/eap।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म्स अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 टीटोबिको
3: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर जी हाँ लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच
4: मैं के अचन जी सलाम तीने
3: सिर्फ ते सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी तारीख नोट कर लो 24 जुलाई अपनी टिकटा आज ही बुक करो लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते

0: पूरा करूं, इतना बात आ रही।
1: हाँ
0: बस एनडीए जी के वोटा जरूर पौन निकले सारे,
1: वोटा जरूर पौन निकले, बिलकुल
0: बहुत जरूरी है जी।
1: आपां कोशिश कर रहे हैं प्रेम भाजी, थोड़ा सारिया के प्यार सदका, बाकी संधु साहब का अपने सिर पर हाथ आ। स्टूडियो नू शायद करिए आपां अपग्रेड अपने नू, जिवें टैलीविजन का अपना हैगा ही है ना, तो उम्मीद आ भी कि क्योंकि हुण थोड़ा जिहा ना एक कर नू फिरदे आ होर कुछ, तो फिर उहदे च आपां खुल के इंटरव्यू करा करांगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सारिआं नू खुल्ला सद्दा होया करूगा भी, जिहड़ा मर्जी जिहड़े दिन मर्जी आ जाओ भाई
0: जी जी,
1: ठीक नहीं, जिहड़े टाइम मर्जी। बलबीर सिंह ढट साहब का भी भाजी का मैसेज 8475 तो कहते हां जी भाजी सत श्री अकाल, ग्रेट रिस्पेक्ट टू यू, गुड शो, प्लीज़ कीप इट अप, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत वधिया। तो बाकी सारे भरावां दे वधिया जब थोड़े मैसेज आउंदे आ। तो मेजर चक साबूआ भाई जी, उन्होंने गीत कढ़िया, उन्होंने लिखिया गीत, तो एक्टिंग भी पूरी कीती आ, तो फिर वह गीत दे दो बोल सुनावां तुहानू, शायद तुसीं ना सुनिया होवे, बहुत ने सुनिया भी हो सकता, तो कई ने ना सुनिया होवे शायद मे भी, तो मैं तुहानू दिखाउणा दो बोल उहदे गीत दे, फिर नाले परमिंदर जोड़ लैणे आपां।

0: for this.
1: ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਕਿੰਗ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
2: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮੌਰਗੇਜਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ।
1: ਸਭ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ। ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਬੈਂਕ।
2: ਕਾਲ 6476068110
1: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ sharmamortgages.com।
3: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।

0: Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 905451260. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja rahe hain. Soch rahe si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mil di hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हुए कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: नजारा आ गया हुए। जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: मेरी पहली पसंद,
2: आई लव इट।
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती।
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज,
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530। नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स, प्रमोट योर बिजनेस विद अस, कॉन्टैक्ट 416-518-3200।
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: Hello.
2: Hello.
1: जी.
2: सस्त्रीकाल बेटा.
1: सस्त्रीकाल जी. सस्त्रीकाल जी. सुनाओ जी.
2: बेटा मैंने कलदीप डॉक्टर नहीं जड़ा और उसका नंबर चाहिए था.
1: केरे डॉक्टर जी?
2: कलदीप डॉक्टर.
1: कुलदीप डॉक्टर था नहीं मेरे को नंबर है जी.
2: नहीं
1: जी मेरे को नहीं है जी.
2: ठीक
1: है. थैंक यू जी. बड़ी मेहरबानी जी. थोड़ी कॉल आई जी.
3: जी असि आप दे नाल शेयर करेंगे जी. शैल गैस स्टेशन. ए शैल गैस स्टेशन च मल्टीपल इनकम जनरेटिंग ही गावे. ए दे च टनल कार वाश ही गए. चार कॉइन कार वाश ही गए. ए च कॉइन लॉन्ड्री की जे. ए च तीन यूनिट ही गए जेडे रेंटल ने. थ्री बेडरूम अपार्टमेंट ही गया. टेक आउट रेस्टोरेंट ही गया. यू नेम इट. ब्यूटीफुल लोकेशन 1.2 एकर लॉट ही है. क्वाथरा लेक से एरिए च ही गावे. ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 6479884449. ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 6479884449. ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ.
4: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ. ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਸਕੂਲ. ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦੇਵੇ. ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਸਕੂਲ. ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਟ ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस. बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
7: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है. केक्स पेस्ट्रीज मिठाइयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो. नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो.
8: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m.

0: मैं क्या किथे जा रही है?
1: दस वरी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
0: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हुन 60,000 स्क्वायर फीट ते मूव हो गया।
2: 100 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन, हर तरह की ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100। विजन वैनिटीज दे न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स दे भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज दे सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800, 905-671-1800।
3: कंडीशंस अप्लाई।
4: ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਪਾਰਕ, GTA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ,
5: ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਮੈਕਲੋਗਲਨ ਐਂਡ ਰੇ ਲੋਸਨ, 9054502800।
6: I am Dev Tatla and you are not.
7: Indian Fruitland, one stop for all your grocery needs.
8: ले, इको जगह तो कितने सारा कुछ मिलता है। दो चीजां ले, एक जगह रुको, फिर अगलियां दो दी, दूसरी जगह रुको।
7: Indian Fruitland है सच्ची, one stop for all your grocery needs. सब तो वधिया grocery, सब तो वधिया prices से। आज ही पहुंचो। उन Indian Fruitland दी सत्वीं location भी खुल गई है। On 25 Sandalwood Parkway, near Horanthro Street, Brampton.
9: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL, because we care.
10: Quick Truck Lube.
11: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा इह गर्म जिहा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 बजे तो बाद गीत संगीत का प्रोग्राम भी हुंदा है, सुखी निजर साहब वतनों दूर अगे चल के 1 बजे तुहाडे लई पेश करनगे। सब तो पहला छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 548 ते सवेरे आया, शाम नूं 857 दे चले जाना। ओ पंडित कन्नो फड़ के लियाओ जिहड़े कहिंदे चंदा रात नूं निकलदा। सवेरे 539 ते आया ते रात नूं 941 ते जाना। सारा दिन चंद्रमा चमकदा रहेगा। अज तापमान तकरीबन 42 डिग्री रहेगा। It's gonna feel like 47 degree। सारा दिन सूरज चमकेगा, कल सूरज चमकेगा। टेम्परेचर गोना बी 35 डिग्री। It's gonna feel like 38 degree। थर्सडे 33 डिग्री तापमान होगा। It's gonna feel like 37 degree। फ्राइडे 30 डिग्री तापमान होगा। It's gonna feel like 33 degree। सैटरडे सारा दिन बदलवाई ना छतरी छाता की लोड पेगी, तापमान 26 डिग्री। संडे 28 डिग्री तापमान रहेंगे। अज दे प्रोग्राम नूं सहयोग दिता है गोल्डन लाइन ट्रैक्टर वाले वीरां ने, जिथे कि कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर तो तुसीं लै सकदे हो। बड़े भरोसेमंद ट्रैक्टर ने, बाय द वे इंडिया तो बन के आए ने। यह लोडर का काम करते ने, लैंडस्केपिंग कर सकते हो। तुसीं घा घू कटना है 2-4 एकड़ जो तुहाडा मकान है, वह कर सकते हो। लोडर ला सकते हो, स्नो ब्लोअर ला सकते हो, स्नो ब्लेड वर्गे अटैचमेंट भी मिलते हैं। फाइनेंसिंग मौके ते है, गल ही कोई नहीं। तेज भाई नूं फोन कर लो 647-622-1754।

0: ਹਵੇਮਲਾ ਵਿਲੇ ਜਿਲਾ ਵਿਲੇ ਚ ਪੜਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: मित्रां दे जंक्शन ते,
0: ओ केड़े जंक्शन ते?
4: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
3: रात लगियां महफलां रे,
4: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM। ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
2: एक लाइफ है जिससे लव है,
3: ये कहते मुझसे सब है,
4: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट इंश्योरेंस फॉर

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तो सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.

0: 55 सात सौ चौरानवे 81 11 ते सिंपली इंडियन की टीम हाजिर है साढ़े नाल जुड़ चुके ने वंस अगैन मिस्टर नागपाल जी यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो सो सराश गलबात आप कर रहे हैं गवर्नमेंट दी ग्रांट्स की सो गवर्नमेंट के ग्रांट देखो ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਵੈਲਕਮ ਅਗੈਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਲਾਸਿਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ
0: ਨੇ ਸਰਾਸ਼ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੂਥ ਜਾਂ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਖੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ 4372643175 ਨੰਬਰ ਹੈ 4372643175 ਜੀ ਸਰਾਸ਼
1: ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋ ਤੋ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। तो इसमें हेरा फेरी है नहीं साफ काम है साफ तरीके से आठ साल से कर रहे हैं तो जिनकी इनकम कम है उन्हीं के लिए मैसेज है राइट अब इसमें फैमिली ऑफ फोर है जिनके दो किड्स हैं हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो उनको 80,000 की फंडिंग बनती है उसमें से $40,000 तो नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स का पोर्शन आज की रेट में है जो रेस्ट 40,000 है ऑप्शनल लोन 0% पे है डेढ़ साल बाद पे करना स्टार्ट करना होता है तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आसान से कोर्सेज आप करते हैं फुली ऑनलाइन घर के कंफर्ट से जैसे हम रील देखते हैं वैसे आपने क्लासेस लगानी है फोन पे चाहे लैपटॉप पे असाइनमेंट्स हैं एग्जामिनेशन नहीं है अब स्किल हासिल करें फंडिंग हासिल करें
0: एंड सरश अगर कोई बोल रहा है कि यार हमारे पास तो टाइम नहीं है या हम ऊबर पे होते हैं या हम फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है
1: उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप ऊबर करते हैं तो आप मतलब आप मान के चले आप साल में आपको अभी 40,000 की ग्रांट मिल जाती है राइट फैमिली ऑफ फोर को 40,000 की ग्रांट आप ऊबर से अगर आप 60,000 कमाएंगे तब टैक्स काट के आपके हाथ में 40,000 आएगा तो मतलब आप स्किल डेवलप करते हैं आप फंडिंग हासिल करें क्योंकि टैक्स फ्री पैसा 70,000 अगर कोई कनाडा में 70,000 कमाता है उसके हाथ में आता है 40,000 के आसपास 40-45 तो यहाँ पे अगर फैमिली ऑफ फाइव आपको ग्रांट ही 50,000 की आ रही है साथ में ऑप्शनल लोन 0% पे आ रहा है तो आपको इसमें कोई एज लिमिट नहीं है आप पेंशन पे हैं अप्लाई कर सकते हैं चार्टर ऑफ राइट्स है फ्रीडम में इस कंट्री में चार्टर ऑफ राइट्स है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एज पे आज गैस का प्राइस 7 सेंट ऊपर जा रहा है आप देखना लाइन लगेगी गैस स्टेशन के बाद लंबी लंबी हम गैस के लिए पैसे बचाएंगे लेकिन हम फंडिंग मिल रही है वो हासिल नहीं करेंगे
0: फंडिंग हासिल करो यार पैसे तुसी गैस भरो ओदे ते ला दो तुसी चाहे रेंट भरो ओदे ते ला दो थोड़े सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं नंबर है 4372643175 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 437-264-3175 437-264-3175 ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਾਸ਼
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬੜੀਆ ਜੀ
0: 437-264-3175 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ